0: और 8,000 का तलफ़ुज़ है हसन। आदात को पढ़ते वक्त उर्दू की तरह जापानी में भी पहले बड़ी इकाई से शुरू किया जाता है। मसलन 1234 को जापानी में कहेंगे सेन निया कुसान जुयोन।
1: अब आज का मुकालमा एक बार फिर सुनिए, उस हिस्से पे खसूसी ध्यान दें जिसमें ताम हेयर ड्रायर की कीमत पूछ रही है।
2: सुगोई देशो? कोरे वा सरा सरा हेयर, कोरे वा ज़िया गा देरु टाइप। हे, इकुरा देस का? सेलु ते काइते अरु। कीते मियो। सुमिमासेन। このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
4: ハルさんの知恵袋。
1: अब हारू सांग की ज़ंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान की करेंसी नोट और सिक्के।
0: जापान में चार अक्साम के कागजी नोट हैं। 1,000 yen, 2,000 yen, 5,000 yen और 10,000 yen। लेकिन 2,000 yen का नोट ज्यादा आम नहीं।
1: अनवर साहब, जापान में हमें मुड़े तोड़े या बोसीदा नोट भी नजर नहीं आते।
0: जी हाँ, क्योंकि जापान का मरकजी बैंक बैंक ऑफ जापान पुराने नोटों को नए से तब्दील करता रहता है। खुसूसन 1,000 yen और 5,000 yen के नोट तो हर साल या दो साल बाद तब्दील कर दिए जाते हैं।
1: और माशरे में नए नोटों का खसूसी किरदार भी तो है।
0: जी हाँ बिल्कुल, शादी वगैरह जैसी पुरमसरत तकरीबात में मुबारकबाद की रकम देते वक्त नए नोट खुसूसी तहनियती लिफाफे में डालकर देना आदाब में शामिल है।
1: ऐसे मौके पर नए नोट अच्छा तासर देते हैं। हमारे माशरे में भी ऐसा ही है, बल्कि हमारे यहाँ तो बच्चों को ईदी देते वक्त भी नए नोट देते हैं।
0: जापान में सिक्कों की 6 अकसाम हैं। 1 yen, 5 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen और 500 yen। जापान में जगह जगह चीज़ों की फरोख्त की मशीनें लगी हुई हैं जिनमें सिक्के इस्तेमाल होते हैं। तमाम इन मशीनों में 1 yen और 5 yen के सिक्के इस्तेमाल नहीं हो सकते। दुकान से खरीदारी के वक्त तक वो आपकी जेब पर बोझ बने रहते हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताज़ा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 6 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला चैन और वायला कवानो से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अमरीकी अभियान को विराम देने की घोषणा की है। ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तथाकथित प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि ईरान के साथ कोई समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है और उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं या नहीं। उन्होंने लिखा कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में बढ़िया प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अन्य देशों ने भी विराम का अनुरोध किया था। ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि बढ़िया प्रगति से क्या तात्पर्य है। उन्होंने यह भी लिखा कि ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी प्रभावी रहेगी। जापान के उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसेई ने कहा कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जापान के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। आकाजावा ने मंगलवार को फ्रांस में पत्रकारों से बात की। सोमवार और मंगलवार को उन्होंने इन दो तेल उत्पादक देशों का ऐसे समय में दौरा किया जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावी रूप से बंद होने के कारण आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आकाजावा का कहना है कि उन्होंने और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई है। उधर संयुक्त अरब अमीरात में आकाजावा ने उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान अल जाबेर से मुलाकात की। जापान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात को कच्चे तेल की आपूर्ति में जून से लगातार वृद्धि करने के तरीके प्रस्तावित किए गए थे। माना जा रहा है कि उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आकाजावा ने पत्रकारों को बताया कि पश्चिम एशिया के तेल उत्पादकों ने वैकल्पिक मार्गों की खोज और भंडार का विस्तार करके अपनी आपूर्ति में लचीलापन बढ़ाने के लिए नए विचार दिए हैं। जापान और फिलीपींस के रक्षा मंत्रियों ने जापान के इस्तेमाल शुदा विध्वंसक जहाजों और अन्य रक्षा उपकरणों के विदेशी हस्तांतरण को शीघ्र बढ़ावा देने के लिए अपने मंत्रालयों के बीच एक कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता जापान के नियम में हालिया परिवर्तन के बाद हुआ है जो अब उसे सैद्धांतिक रूप से घातक हथियारों का निर्यात करने की अनुमति देता है। जापानी रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और फिलीपींस में उनके समकक्ष गिल्बर्टो तेओदोरो ने मंगलवार शाम फिलीपींस की राजधानी मनीला में 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। बैठक की शुरुआत में कोइजुमी ने कहा कि जापान और फिलीपींस के बीच सहयोग अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पहले से कहीं अधिक जटिल और तनावपूर्ण हो गई है। दोनों मंत्रियों ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वे इस बात पर सहमत हुए कि कार्यबल जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले आबू कुमा श्रेणी के विध्वंसक एस्कॉर्ट जहाजों के साथ साथ TC-90 विमानों को फिलीपींस को शीघ्र हस्तांतरित करने के लिए ठोस कदमों पर चर्चा करेगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: मलेशियाई पुलिस ने स्कैम गिरोहों के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के संदेह में 2,200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। इनमें 5 जापानी नागरिक भी हैं। पुलिस ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि उन्होंने जनवरी से अप्रैल तक देश भर में कथित तौर पर आपराधिक गिरोहों के ठिकानों पर छापेमारी की और धोखाधड़ी के मामलों में संलिप्त होने के संदेह में कुल 2,251 लोगों को हिरासत में लिया। जनवरी अंत और फरवरी के बीच हुई धरपकड़ में 430 संदिग्ध जालसाजों में से 270 विदेशी नागरिक थे, जिनमें चीनी और इंडोनेशियाई नागरिकों के साथ साथ 5 जापानी नागरिक भी थे। पुलिस ने कहा कि इन गिरोहों के साधारण आवासीय व्यावसायिक इमारतों और अन्य भवनों में ठिकाने थे, जिनमें काफी बदलाव किए गए थे ताकि पता न चल सके कि वे ठगी के अड्डे हैं। लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने जापान सरकार के अनुरोध पर 7 आइनू लोगों की अस्थियां जापान को लौटा दी हैं। अस्थियां सौंपने का एक समारोह मंगलवार को संग्रहालय में आयोजित किया गया, जिसमें जापान के आइनू संबंधी नीति मंत्री खिकावादा हितोशी उपस्थित थे। संग्रहालय के निदेशक ने सफेद कपड़ों में लिपटे डिब्बों में अस्थियों को वापस किया। इनमें से कुछ अस्थियां उत्तरी जापान के होक्काइडो प्रीफेक्चर के याकुमो और मोरी नगरों में खुदाई में मिली थीं। होक्काइडो के आइनू संगठन के कार्यकारी निदेशक ओकावा मासारू ने कहा कि कई साल विदेशी धरती में फंसे पूर्वजों की भावनाओं के बारे में सोचकर ही वे भावुक हो उठते हैं। इन अस्थियों में से कुछ ऐसी हैं जिन्हें 1866 में ब्रिटेन के तत्कालीन दूत द्वारा संग्रहालय को दान किया गया था और 160 वर्षों से संग्रहालय में रखी हुई थी। माना जाता है कि इन्हें शोध उद्देश्यों के लिए जापान से बाहर ले जाया गया था, हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी अब तक नहीं मालूम है। आइनू लोगों की अस्थियां चौथी बार विदेशों से वापस लाई गई हैं। इससे पहले पिछले साल एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से अस्थियों को वापस लाया गया था। अस्थियों को होक्काइडो के शिराओई नगर में उपोपोई राष्ट्रीय आइनू संग्रहालय एवं उद्यान में एक स्मारक स्थल में रखा जाएगा। जापान में मंगलवार को बाल दिवस मनाया गया। बच्चों के स्वस्थ विकास की कामना के लिए टोक्यो के एक प्रसिद्ध स्थल के पास कार्प मछली के आकार की लगभग 1,000 पताकाएं फहराई गईं। इस वार्षिक आयोजन के लिए टोक्यो के सुमिदा वार्ड में स्थित स्काई ट्री पर लोगों की भीड़ देखी गई। 634 मीटर ऊंचे टावर के नीचे रंग बिरंगी पताकाएं हवा में लहरा रही थीं, जिससे लोगों को शानदार तस्वीरें लेने का अवसर मिला। कोई नोबोरी नामक इन पताकाओं को ह्योगो प्रीफेक्चर के खातो शहर और जापान के अन्य प्रमुख उत्पादन स्थलों में बनाया गया था। ये पताकाएं आमतौर पर कोई यानी कार्प मछली के आकार में बनाई जाती हैं, लेकिन टोक्यो स्काईट्री में प्रदर्शित कुछ पताकाएं चित्तीदार गार्डन ईल मछली से मिलती जुलती थी, जो पास के एक मछली घर में रखी मछली की लोकप्रिय प्रजाति है। एक 7 वर्षीय लड़की ने कहा कि ये पताकाएं रंग बिरंगी और सुंदर थीं। 2 साल के बेटे के साथ घूमने आए एक व्यक्ति ने कहा कि खिली धूप में कार्प मछली की पताकाएं बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा कि बाल दिवस मनाने के लिए वहां आने की उसे खुशी है।
2: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अमरीकी अभियान को विराम देने की घोषणा की है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।